उड़ान दे अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा नु 4378700001 4378700001।

दोस्तों, ऐसी आवाज एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार एमी विर्क दी। एमी विर्क ऐसा कलाकार है जो मुढ़ तो ही पंजाबी दे नाल, पंजाबीयत दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ा है। जदों भी पंजाब ते कदे हड़ां दी जां होर तव झखड़ां झोरियां दी मार पई है तां इहो जे कलाकार जिहड़े अपनी किरत कमाई चों एक वड्डा हिस्सा पंजाब दी मदद लई दान दिंदे ने, तां हुण फर्ज है अपना भी। एमी विर्क जो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत दा मालक भी है, वह आए ने जी ठोडे शहर टोरंटो दे विच 30 अगस्त नूं उहनां दा लाइव शो जिहड़ा वा वह होण जा रहा है द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन टोरंटो दे विच। ते जे तुसीं हले तक टिकटां नहीं लईआं तो मैं तो यही कहूँगा भी ticketmaster.com ते जाओ ते अपनी अपनी टिकटां बुक कर लो, क्योंकि जिहड़ियां टिकटां ने वो बहुत तेजी नाल सोल्ड आउट हो रही ने। ते जरूर सपोर्ट करो इदां दे कलाकार नूं जिहड़ा अपनी पंजाबी नूं नाल लैके चलिया होवे, ते सब तो वड्डी गल सरदारी नूं कैनेडा वर्गे सोहणे मुल्कां च लैके आवे। तां भुल्लिओ ना 30 अगस्त दी शाम नूं टोरंटो दे विच लाइव शो। ते इस दे नाल आपां गल कर रहे सी बचपन दी।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइनिंग, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नू जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए, इहदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली ना रही तां कवितावां रुल जाणियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जाणियां। ऐडे महंगे मुल वाली चीज ना गवा दियो, वेखियो पंजाबी ना भुला दियो, वेखियो।

ट्रक हायर करो, जो मेन्यू डिसाइड करोगे, गर्मा गर्म हर चीज तुहाडे घर दे दरवाजे दे उपर पहुंचदी करनगे। कोई 100 तो 125 आदमियों के लिए फंक्शन तुसी करना, इन्हों का हॉल भी बुक

भी नहीं करनी पाएगी। किसी भी किस्म की कोई भी समस्या है, किसी भी कंपनी की कोई गड्डी है, तुहानू वधिया सर्विस लैण दी नाम याद रखो, नैशनल आटो सर्विस 905-450-3300 कैंडी रोड साउथ। अमायरा अकैडमी ब्यूटी दी दुनिया दे विच जाणिया पहचाणिया नाम। बीबियां भैणां ने कोई हेयरस दा ट्रीटमेंट लैणा होवे या ब्यूटी दा कोई ट्रीटमेंट लैणा होवे या इस फील्ड दे विच कोई कैरियर बनाउण दे लई डिप्लोमा करना, हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल अस्थैटिक डिप्लोमा या कोई होर एडवांस डिप्लोमा, तुसीं किसी किस्म की जानकारी लई फोन करो 905-399-810-905-399-6110। अमायरा अकैडमी हेयर एंड अस्थैटिक्स। गलबात साड़ी चल रही है कि उम्र नू लंबी करन दे केड़े केड़े पांच पॉइंट जेड़े सर्वे होया, उस सर्वे दे विच कॉमन पॉइंट जेड़े सारयां दे मिले है ना, ते उन्हां दी असी डिस्कशन कर रहे सी। चार पॉइंट असी डिस्कस कीते सी, पहला तुरना फिरना वाक, दूसरा संपर्क वधाउणा अपना दोस्तां मित्रां भैण भरावां रिश्तेदारां दे नाल इन टच रहना, संपर्क च रहना बहुत जरूरी है। आइसोलेशन जिहड़ी है ना वह आदमी दे लई बड़ी घातक हुंदी है, इकल्लापन जिहड़ा आदमी दे लई बड़ा घातक हुंदा है, नुकसानदायक हुंदा है। इस लई दोस्तां मित्रां भैण भरावां नेचर दे संपर्क दे विच रहना, उहनां दे नाल कनैक्शन बनाउणा, ये उम्र नूं लंबी करन दा बहुत वधिया एक उपराला है, साधन। फॉरगिव माफ करना, मन दे विच जो रंजश है, जो गिले है, जो शिकवे है, जो पहलां दी उम्र दे असी पाल रखे है, जो जो साडे नाल कुछ वापरिया, सारयां दोस्तां मित्रां भैण भरावां नूं माफ कर दिओ। किसे ने तुहाडे नाल कोई वधीकी कीती है, किसे ने तुहाडा कुछ मारिया है, किसे ने तुहाडे नाल कोई फरेब कीता है, जो जो कुछ कीता है ना, इस स्टेज ते आ उहनूं सब कुछ माफ कर देना चाहीदा है। यार कोई गल नहीं, जो हो गया सो बीत गया, उहदे ते मिट्टी पाओ। नैक्सट पॉइंट हैगा सी शेयर करना, अपने सुख नूं अपने दुख नूं दोस्तां मित्रां दे नाल शेयर जरूर करो यार। हाँ ऐ नहीं मैं कह रहा कि अपने घर दे सीक्रेट जिहड़े सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने सुख दुख जिहड़े है ना रोजमर्रा जिंदगी दी जिहड़ियां छोटियां छोटियां प्रॉब्लम जिहड़ियां खुशियां जिहड़ियां वह दोस्तां मित्रां दे नाल जरूर शेयर करते रहना सानू चाहिए। लास्ट जिहड़ा एक पॉइंट हैगा ना वह हैगा थैंक्स, शुक्रिया अदा करना। ये तो गुरबाणी दे विच भी लिखिया है ना कि सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। सब तो पहला पॉइंट है शुकराना करना, जो कुछ भी उस परमात्मा ने सानू बख्शिया ना, जो कुछ भी उसने सानू दिता है, उस दे दित्ते दे विच अपने आप नू असी सबर करिए, संतोख करिए और उस परमात्मा का शुक्र करिए, उदा थैंक्स करिए कि जो भी उसने सानू कुछ दिता है ना, गिला शिकवा ना करिए। हो सकता है जो जो कुछ उसने तुहानू दिता है ना बहुत सारे लोगों का वह सपना होए कि यार उदे कोल जो कुछ है ना काश मैनू मिल जाए। सो अपने तो उच्चिया वल देख के जिंदगी कदे भी नहीं ज्योई जाती, हमेशा अपने तो नीवियां वल देख के जिंदगी ज्यो कि यार देखो उन्हां कोले ते ए भी कुछ नहीं है मेरे कोल है। जे तुसीं इस तरह के मन की सोच बना लोगे ना तो फिर तुहानू जिंदगी दे विच सुकून मिलेगा, ते जिंदगी दे विच सुकून मिलना ना जिहड़ा ये उम्र नूं लंबी करन दा ये भी एक सब तो वड्डा एक फंडा कह सकते हो, नजरिया कह सकते हो, सोर्स कह सकते हो। सो यह जिहड़े पंज पॉइंट है ना मैनू ते मैं अज पढ़िया ना ते मैं अज सोचिया कि दोस्तां दे नाल जरूर शेयर करूंगा। दोस्तां मित्रां नूं बड़ा राहत मिलेगी इन्हां चीज़ां तो कि बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र जिहड़े सीनियर सिटीजन बन गए ने, सो उन्हां नूं जरूर इन्हां चीज़ां नूं अपने मन दे विच रखना चाहिए कि जिन्ना क चल फिर सकते ने सैर सुर करनी चाहिए है, दोस्तों मित्रों के संपर्क में रहना चाहिए है, भैन भरावों के संपर्क में रहना चाहिए है, फोन फून एक दूसरे को कर लिया करो, कोशिश करया करो दसवीं भी पंद्रह दिन महीने बाद उन्होंने मिलिया भी जाए ना किसी सबब के नाल, तो वह भी सब तो वधिया तरीका है। फॉरगिव कर दो जो पास्ट के जो जो किसी ने तुहाडे नाल कोई वधीकी की, जो जो उच्चा नीवा बोलिया माफ कर दो, उस कोई फर्क नहीं पैंदा दे नाल। शेयर करो सुख दुख दोस्तों मित्रों के नाल शेयर करते रहना चाहिए, थैंक्स करो जो कुछ है उहदे विच अपने आप नूं संतुष्ट समझो और वह परमात्मा का थैंक्स करो कि उसने जिन्ना तुहानूं दिता है ना वह उस दी रजा सी, जिथे उसने तुहानूं रखिया होया जेकर अपने आप नूं उत्थे रखोगे ना तो मेरा ख्याल है तुहाडा मानसिक तौर पर भी तुसीं तंदुरुस्त होवोगे। सो जो मानसिक तौर पर तुसीं तंदुरुस्त हो तो शरीरक तौर पर अपने आप ही तंदुरुस्त तुसीं रहोगे। जिदा कहा जाए भी हैल्दी माइंड इन ए हैल्दी बॉडी, जे तुहाडा माइंड
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਰਾਈਡੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਜ ਕੋਈ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਓ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਵਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 647-367-5353 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ 437-243-3091 ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जे तुसी जाना होवे किसी भी टोरंटो आइलैंड्स नू, सेंटर आइलैंड, वार्ड्स आइलैंड या हैनलिन्स पॉइंट, ता लेके जाओ T-Dot वाटर टैक्सी। फेरी दियां 2-3 घंटे दियां लाइनअप्स तो बचो अते लेके जाओ अपनी प्राइवेट T-Dot वाटर टैक्सी। T-Dot वाटर टैक्सी दी डॉक लोकेटेड है 1 क्वींस की ईस्ट ते, यंग अते क्वींस की ईस्ट दे बिल्कुल कॉर्नर ते। मामूली जिहा रेट अते आराम नाल राजियां वांग जाओ अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी ते। T-Dot वाटर टैक्सी 6473708368। इन्हां दी डॉक ते पार्किंग भी अवेलेबल है। उत्थों तुसी अपनी टिकट्स भी बाय कर सकदे हो कैश या क्रेडिट कार्ड दे नाल। T-Dot वाटर टैक्सी दी ऐप भी डाउनलोड करो। T-Dot वाटर टैक्सी, द बेस्ट वे टू गो टू सेंटर आइलैंड।
3: सो बिल्कुल जी, 905-673-3337 नाल दी नाल ब्रैम्पटन क्रैमटोरियम नाल तुसी गलबात कर सकदे हो। अपने फ्यूनल दी प्री प्लानिंग दे लई तुसी ब्रैम्पटन क्रैमटोरियम नूं याद रखो। अज दे प्राइस तुसी लॉक कर सकदे हो। ब्रैम्पटन क्रैमटोरियम 905-458-2222। ब्रैम्पटन क्रैमटोरियम ते एक सुनेहा तुहाडे नाल मैं सांझा करना आ। अज शाम नूं 5:30 बजे कोर्टयार्ड मैरियट होटल ब्रैम्पटन, कॉस्को वाला प्लाजा, राजधानी स्वीट्स के बिल्कुल सामने कोर्टयार्ड मैरिट होटल के हॉल के पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज, बड़े सत्कारी चेहरे जरनैल सिंह एक शो लैके आ रहे ने। सियाने कहिंदे ने सिर्फ $20 टिकट आ, पर गल्लां दे विच बहुत अनमुलियां होनियां। रिश्तियां दी गल, किरदारां दी गल, पंजाब दे खुसे राज दी गल, बड़ियां ऐसियां गल्लां जिहड़ियां असीं पिछे छड्ड आए हां। इन्हां गल्लां नूं सुणन दे लई तुसीं 6-8 समां कढ़ना पैणा। तुहाडे 2 घंटे उस जिंदगी दे सब तों बेहतरीन घंटे होणगे, इह मेरा तुहाडे नाल वादा आ। 6-8 अज शामी कोर्टयार्ड मैरियट होटल ब्रैम्पटन, कॉस्को वाले प्लाजे दे विच, राजधानी स्वीट दे सामने जिहड़ा होटल आ उहदे हॉल दे विच, इह जिहड़ा कॉन्फ्रेंस टाइप एक गल्लां बातां होणियां तुहाडे नाल सिद्धियां, ऑलमोस्ट हॉल फुल आ, कुछ क सीट्स बचियां ने। तुसीं कॉल कर सकदे हो 437-870-0001, 437-870-0001 ते तुसीं कॉल कर लिओ। 437-870-0001 ते जरूर पहुँचो। चंगीआं चीज़ां नूं सपोर्ट करना, एप्रीशिएट करना साडा फर्ज बनता, एक लाखी धर्म भी आ। और नाल दी नाल चंगीआं चीज़ां दी गल होई तां एमी विर्क दा शो 30 अगस्त नूं, 30th अगस्त टोरंटो दे विच होण जा रहा है। तुसीं इत्थे टिकटां अपनियां नहीं लईआं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਦ ਥੀਏਟਰ ਐਟ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਸੀਨੋ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ticketmaster.ca ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ DM ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 2, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਗੋਚਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਖੜੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਮੀ ਵਿਰਕ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਕਸੀਨੋ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਸੀਨੋ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ticketmaster.ca ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ticketmaster.ca ਤੋਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
4: In 1980, Terry Fox started a marathon against cancer. Today, you can help finish it. Join us at the Terry Fox Run on September 20th. Register and fundraise for cancer research at terryfox.org.
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja rahya. Soch rahya si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हुई कॉल करो 9054512600 9054512600
2: अपनी कंपनी मिसेस आगा अपन केटरिंग दी लोड सीगी ते आपां तवा किचन नाल कॉन्टैक्ट कीता अपन 50 बंदे दी केटरिंग करवाई सी ते अपने करीबन 55 तों 60 बंदे सीगे फिर भी केटरिंग उन्हां कोल मतलब बहुत ज्यादा सी सानू कोई थोड़ नहीं आई असीं रिकमेंड करदे आं तुसीं भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तो थैंक यू सो मच
3: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटेन एश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699-TAWAKitchen.ca
4: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
5: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज

आज खूबसूरत सुबह का खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरभव निरवैर के नाल नाल असी हमेशा कहने हुन्ने कि रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे यानी कि नवी चीज़ा जिंदगी चाहदिया रहनगिया उन्होंने एक्सैप्ट करते रहोंगे दुख और सुख दोनों के जो अवस्था ही हो जाऊगी कि आनंद पया मेरी माए सतगुर मैं पाया तकलीफा दुख बहुत कुछ जो आस पास है वह खत्म हो जाता। खत्म किदा हुंदा आनंद की अवस्था ही ऐसी है कि आनंद तो चरखड़िया भी आया शहादतों पर भी आया जन्म मरम के दुखा चो कटे जाने भी आया तो आनंद की अवस्था च बाबा दीप सिंह भी रहे आनंद की अवस्था च मरजीवड़े शहीद सिंह जिन्हें धर्म हित सी जत्ते बंद बंद कटवाए खोपरिया लहाइया चरखचड़िया चढ़े आरिया ना तन चरवाए बंद बंद कटवाए मावं ने बच्चों खुशी खुशी आनंद की अवस्था च झूलियाँ च पाया। तो हमेशा मैं सब तो वड्डी गल कहना हुन्ना देख के अणडिठ कीता देख लेना किसी चीज़ नूं फिर उन्होंने अणडिठ कर देना भी मैं तो देखिया ही नहीं है मेरा बच्चा मेरे सामने मार दिता औरंगजेब के सिपाहियों ने तो हुण उहदे टुकड़े टुकड़े करके मेरी झोली उड़ा के मेरी झोली च पा रहे ने तां जो मैं अंतम संस्कार कर सकां। ये माहौल रहे ने ये इतिहास नहीं है कि 4000 साल पहला फलाना आया सी उन्हें फलाने नूं ऐ मारता सी गल दा बतंगड़ नहीं है इतिहास है कि थोड़ी चौथी या पंजवीं पीढ़ी उन्हां दे विच्चों हो सकती है जिहड़े शहादतां पा गए। सो अज इस शो दे विच इक वार फिर तो चढ़दी कला मतलब चढ़दी कला कोई डर नहीं कोई भाव नहीं है चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत्त दा पलाणा।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मतलब भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा तो मैं नाल नचिए
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा दो मेरे नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. वे आ जा दो मेरे नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: नमस्कार सस्काल, मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता की चौकी.
4: मान तू बताया मेरा दुख सारे काल के.
3: On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Herman. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शाम म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी. हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है. सो गाइज, सी यू ऑन 4th September.
5: वाह जी वाह. लो जी, माता दी चौंकी हो रही है जी. ई रोज कन्वेंशन सेंटर दे विच तुसी उत्थे सारे ने पहुंचना है. इहदी कोई टिकट नहीं हुंदी. तुसी अपना तिल फुल जो भी है ओह तुसी जरूर नेहा सेठी जी दे नाल तुसी इस चीज बारे संपर्क कर सकदे आ, जां अमन जी नाल संपर्क भी कर सकदे आ. इंडियन फ्रूट लैंड ते तुहाडे वास्ते भई रखड़ी दी सेल लग गई है. थाली 499 दी है, 2-2.5 साल ही हो गए है. मनीष नहीं कहिंदे, सनी जी कहिंदे, दीपक साहब कहिंदे, कहिंदे हरजीत भाजी सानू पता कि सारे परिवार कई बार किसी को जॉब नहीं होंगी. मैं तो हैरान हाँ कि यह थाली छोटी नहीं, 2-3 सब्जियां, मिठा, नान, चौल, हरी मिर्च, नाल लाल प्याज, रायता, ओ हो 499. कई रेस्टोरेंट $5 का नान ही बेच तुरी जाते हैं. दसो उन्होंने पता नहीं लगता भी $5 की थाली असं अनाउंस करते हैं पंजाबी विरसा रेडियो से.

0: CNE Grand 5050 is on now. Get your tickets today at CNEF5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000, or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.
1: Come and celebrate Toronto and do everything you want at the X.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: हेलो
4: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
4: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
3: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
4: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
3: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
4: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
5: 32-55-80 98
4: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
5: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
6: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: और रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
6: करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: Talk530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: tb.com लाइव सुनना चाहते लाइव पे क्लिक कर लो जी वाच करना चाहते हैं तो ओते क्लिक करो या फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स के ऊपर पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओदे ऊपर जाके देश परदेश टीवी नु क्लिक करो ओते तुसी सुन भी सकदे हो देख भी सकदे हो 24/7
2: हाय रब्बा हुन की बनू
3: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी तो याद रखो इको नाम बरा टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
4: इना कोल है पांच ਧੜਲੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਪਰ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ
3: ਜੋ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਗਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੋ ਅਪ ਫਰੰਟ ਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ

0: अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल।
1: वाह वाह वाह,
0: धन्यवाद।

0: रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो ना जुड़े हुए जी
1: जी अगले कॉलर 4791 हां जी सत श्री अकाल
0: गीत ला लीए बड़ी जल्दी सुना दें ठीक है मेहरबानी रेडियो प्रोग्राम देश परदेश लो साढ़े कबीर ने फरमाइश की कहते कोई पुराना ड्यूट सोंग सुनाओ ऑफर सुनाने तू पुराना ड्यूट सोंग सुखविंदर सुखी ते करतार रमला फरीदकोटिया की आवाज
2: मैं अपने रब वर्गे